0: की जैमर सुर संगीती सदन बख्श
1: सिर शादी को
0: ये जगह का नाम है सिंधी पत्र सिर शादी को ये जो दमुरा वाला हमारा